0: देखकर बच्चों को तुम पसंद आ गए, हमारी फैमिली कंप्लीट।
1: माँ को पटा लिया तो बच्चों की
2: उंगली तो किस्मत ने किया हमारी, इतना भारी सजा दे दिया, इतना भारी।
3: हाथ में उंगली डाल, तो हाथ में उंगली डाल, भाभी की आंख में नहीं।
4: अरे
1: खजाने का नशा कहाँ है?
2: नहीं बताऊंगा।
5: बॉस, इसके बटवे में तो आपकी गर्लफ्रेंड शबनम का फोटो है।
1: और किसके किसके पास मेरी शब्बो की फोटो है?
2: अरे खजाने का

0: का है।
1: ये तो सांपों का चुम्माश में निकला बे। देखो मेरे भाई, ये फैमिली फिल्म है, इसमें ना ये सब नहीं चलता है।
2: फुलौड़ी बिना चटनी कैसे बनी, फुलौड़ी बिना चटनी कैसे बनी।
3: चाय पियोगे भैया?
1: तो भूतनी के मुर्च कली पार।

0: देखकर बच्चों को तुम पसंद आ गए, हमारी फैमिली कंप्लीट।
1: माँ को पटा लिया तो बच्चों की
2: उंगली तो किस्मत ने किया हमारी, इतना भारी सजा दे दिया, इतना भारी।
3: हाथ में भी डाल, तो हाथ में भी डाल, भाभी की आंख में नहीं, मगर बस की आंख में मत।
4: अरे स्टैचू,
3: चल गई।
1: खजाने का नशा कहाँ है?
2: नहीं बताऊंगा।
1: सीरियसली
5: इसके बटुए में तो आपकी गर्लफ्रेंड शबनम का फोटो है।
1: और किसके किसके पास मेरी शब्बू की फोटो है?
2: अरे खजाना।

0: का है।
1: ये तो सांपों का चुम्माश भी निकला बे। देखो मेरे भाई, ये फैमिली फिल्म है, इसमें ना ये सब ना ही चलता है।
2: फुलौड़ी बिना चटनी कैसे बनी, फुलौड़ी बिना चटनी कैसे बनी।
3: चाय पियोगे भैया?
1: तो भूतनी के मुर्ज कली पर।

0: अगर बच्चों को तुम पसंद आ गए तो हमारी फैमिली कंप्लीट।
1: माँ को पटा लिया तो बच्चों की
2: उंगली तो किस्मत ने किया हमारी, इतना भारी सजा दे दिया, इतना भारी।
3: हाथ में डाल, तो हाथ में उंगली डाल, भाभी की आंख में नहीं, मगर बस क्या में मगर।
4: अरे स्टैचू
3: चल गई,
1: खजाने का नशा कहा है?
2: नहीं बताऊंगा, जरा सीरियसली।
5: इसके बगल में तो आपकी गर्लफ्रेंड शबनम का फोटो है।
1: और किसके किसके पास मेरी शब्बो की फोटो है?
2: अरे खजाने।

0: लगता है।
1: ये तो सांपों का चुम्माश भी निकला बे। देखो मेरे भाई, ये फैमिली फिल्म है, इसमें ना ये सब ना ही चलता है।
2: फुलौड़ी बिना चटनी कैसे बनी, फुलौड़ी बिना चटनी कैसे बनी।
3: चाय पियोगे भैया?
1: तू भूतनी की मुर्गी कली पर रो।